0: यो नया वर्ष को अवसर में सीजी का टीवी एंड होम अप्लायंसेस को खरीद में आकर्षक कैशबैक तथा पक्का उपहार। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 2 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 1 केजी एरियल, माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग किट र एसी में फ्री इंस्टॉलेशन। नागरिकता भएपुग्छ सीजी एलएक्स ईएमआई मार्फत सजिले खरीद गर्न सकिन्छ।
1: यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्क को। यो तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर।
2: नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापाले केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यमा 19 जना मनोनयन गरेको विषयमा पूर्ण बहादुर खड्का र शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन्। आफूहरूसँगको परामर्श बिना गरिएको मनोनयनले पार्टीको बृहत्तर एकतामा ठोस पुगेको उनीहरूले बताएका छन्। मंगलबार बिहान पूर्व कार्यभाग सभापति खड्का र नेता कोइरालाले आ आफ्नो पक्षका नेताहरूसँग छलफल

एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंजा।

0: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल वालिंग आठ पेट्रोल पंप को नजीक जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
1: रेडियो आदि खोला 105.4
2: रेडियो आदिखोला 105.4

एस आधी फ्लाक हबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा

कसरी सुन्न सकिन्छ हाम्रो पात्रमा सजिलो गरी सुनौ बुझौ बुझौ सुनौ हटा कन्फ्युजन ग्याप द सोलुसन इट्स अ कुल डुली डट कम ग्याप द सोलुसन इट्स अ कुल डुली डट कम

को अवसर में ईसीएल का विभिन्न होम अप्लायंसर को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ ग्लोबल नंबर 1 टीसीएल इंस्पायर ग्रेटनेस एक्सपीरियंस